नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को

पहली से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नयाँ अल्लुरी सीताराम राजु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुनेछन्। अब समाचार विस्तारमा। केन्द्रीय तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले वर्ष 2047 सम्ममा भारत

0: कार्यक्रम स्पन्दनको यो अन्तिम प्रस्तुति यहाँले सुन्नुभयो बानिका प्रधान अनि साथीहरूको स्वरमा संगीत भूपेन्द्र राई थियो नि शब्दहरू आशिष थापाको र अघिल्लो क्रममा आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार रिले गरी सुनाइरहेछौ सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणी
1: सोलर पैनल लगवा ले कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM Surya Ghar.gov.in पर सूर्य
4: घर क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
5: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा मुख्य समाचार लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई

0: दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने, इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाज शास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगे स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में

0: पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
1: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल

0: एथलेटिक्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
4: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration

0: हाम्रो सरोकार कार्यक्रमको प्रस्तुतिपछि अब समप्रसारण गरी सुनाउन लागिरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार। सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रलाई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित राज्य में अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अशोक धाम स्टेशन से मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर बिजली का एक खंभा गिरने से करंट आने की अफवाह के कारण अफरा तफरी मची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर मेहमान सो रहे थे। होटल मालिक ने

बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 2 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: কি আপনাদের?
1: তখন ওই যে কোনো জিনিসগুলো টিং বাজিয়ে তাদেরকে তাড়াই।
0: আচ্ছা আচ্ছা, আর যখন হাতি আসে তখন কি করেন?
1: হাতি আসলে তো অনেকগুলো লোক জমা করে তারপরে হাল্লা চিল্লা করে ওনার দিকে তাড়াইতে হয়।
0: আর বাইসন?
1: বাইচন তো উপায় নাই, ওরা নিজে ইচ্ছা মতো আসে, নিজে ইচ্ছা মতো চলে যায়।
0: আচ্ছা, এই যে আপনারা বনবসতিতে থাকেন, সবসময় বন্য পশুর সাথে লড়াই করে এখানে টিকে আছেন, এই যে বন দপ্তরের আধিকারিকরা বা বন দপ্তরে যারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আছে, ওনারা আসে মাঝে মাঝে?
1: ডাক দিলে চলে আসে, যখন হাতিগুলো আসে না ধানগুলো খায় তখন যদি পালাই না তখন ওই যে অল্লেপের
2: মেজবানি করে। ভারত কে ব্রিক্স কে অধ্যক্ষতা 2026 কে তহত কার্যক্রম কি থিম হ্যায় সমায়োজন নবাচার সহযোগ আর স্থিরতা কা নির্মাণ। ব্রিক্স পর্যাবরণ মন্ত্রীয় কি বৈঠক কা সঞ্চালন কেন্দ্রীয় পর্যাবরণ বন আর জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব করেঙ্গে। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
3: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में आधे प्रतिशत की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुस्तकालय रोड फारबिसगंज बिहारबाट शम्भु प्रसाद गुप्त, कुन्ती देवी, प्रेम कुमार गुप्त, कृष्ण कुमार गुप्त अनि नन्दकिशोर गुप्त, दल्लु टोला फारबिसगंज बिहारबाट सिराज परवाना, अन्सारी बेगम, राजा सौरभ, तरन्नम तपस्म, इख्तियार बल्ला मास्टर अनि प्रदीप रौनियार, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्रबाट सिद्धार्थ गोण्डाने, अर्चना गोण्डाने, हिरामन सेन्डे, प्रणय अनि प्रसिद्धि, मस्नुकाटिला दिल्लीबाट कमल बालुजा, मधु बालुजा अनि सागर बालुजा, मालबजार जलपाइगुडीबाट अजय धनुका साथै परिवारका अन्य सदस्यहरू, लुधियाना पञ्जाबबाट अमरजित सोनम कौर अनि परमजित अदिबा कौर, बिहारी कलोनी मासमुन्दबाट वल्ली उल्ला फकीर, डब्लु उल्ला अनि परविन आसमा, बुलन्दसहरबाट बद्रु अली अन्सारी, फर्जुवल्ली अनि फर्जी वल्ली, अररिया र चोखर बजारबाट मोहम्मद शरीफ आर्जु, मोहसिन आर्जु, नवाब आर्जु, सभा आर्जु, सरफराज खान अनि अफजल, मेन रोड रानीगंजबाट फर्जाना खानम, साहना सबनम अनि नुसरत, अररिया चोकीहाटबाट सौम्या नाजमिन, रुकैया आफ्रिन अनि रिहाना परविन, छत्तीसगढ भाटापाडा दत्रेङ्गीबाट द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार अनि छविन्द्र कुमार, दक्षिण सिक्किमबाट अर्जुन प्रधान, गान्धीचोक पञ्जाबबाट हरदेव मिका, बलविन्दर बिरक, जैतेक बिरक अनि मिका बिरक, मौनाथ बञ्जन उत्तर प्रदेशबाट राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा अनि आर्यन, शिव मन्दिर हकीकतपुरा उत्तर प्रदेशबाट मुन्ना स्वर्णकार, पिङ्की स्वर्णकार, रितेश कृष्ण अनि पिहु स्वर्णकार। यहाँहरूको अनुरोधमा अब कार्यक्रमको अघिल्लो प्रस्तुति राखिरहेछौं लता मंगेशकर अनि किशोर कुमारको युगल स्वरमा डन चलचित्रबाट। र यस गीतमा संगीत छ कल्याणजी आनन्दजीको अनि शब्द रचना अन्जानको।

0: Heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for the day. An orange alert for very heavy rainfall has been issued for Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand and Sikkim till tomorrow. An earthquake of 5.9 magnitude struck Indonesia's Flores region early this morning, with the latest tremor occurring at a depth of around 10 kilometers. The earthquake comes days after a powerful 7.7 magnitude quake struck eastern Indonesia. The country's National Disaster Management Agency said the death toll from a series of earthquakes has risen to 54. The BWF Badminton World Championship began at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi today. The Indian pair of M.R. Arjun and Hariharanam Sakarunan advanced to the second round of the men's doubles category in New Delhi. The duo were leading 6-4 in the second game when their opponents, Scott Gildea and Paul Reynolds of Ireland, retired hurt. Earlier, Arjun and Namsakarunan had won the first game 21-16. Talking to media after the match, the Indian duo said the support and cheers from the home crowd helped boost their confidence. They also noted that winning the early points in the first game helped them gain control of the match. Later in the day, former world champion and 9th seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland in the women's singles. Meanwhile, the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Sethi will face world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the men's singles category. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 183 for 5 in their first innings against India on day 3 of the opening test of the series at the Galle International Stadium when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government to constitute high-level committee to review banking reforms and future course of public sector banks towards Vikasit Bharat. India reaffirms people-centric, humanity-first approach to BRICS collaboration during its chairship. 7 women died in stampede at Ashok Dham Temple in Bihar. 5 people killed in a fire incident in Birbhum, West Bengal. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 184 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Galle. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun, Hariharan Amsakarunan advance to second round of men's doubles category. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जनकेंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसकरुन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well-researched...
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है।

0: और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी?
1: And in that, the role of banks.
2: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
0: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्बे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @eirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब

उत्तराखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार कर्नाटक ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ओटिटी प्लेटफर्ममा हामी आकाशवाणीको साङबाट बोलिरहेछौँ। श्रोतालाई अब आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसारण गरी सुनाउनेछौँ हिन्दी समाचार, प्रतीक्षा साँच्नुहोला।

नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया तीरथ सिंह रावत राम माधव बैजयंत जय पांडा सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया श्री नवीन ने विनोद तावड़े सुनील बंसल स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने पर बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति के सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उनके हमलों की साजिश को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले में रामगढ़ वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है यह अभियान संदिग्ध गतिविधियों के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम GAASI के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9BC गार्जियन विमान 30 महीने की लीज पर लिए जाएंगे ये विमान अत्यधिक ऊंचाई पर लंबी अवधि तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है इनका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए किया जाएगा पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसार तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ विस्फोट के कारण का अभी पता चल नहीं पाया है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कल रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई तूतू खालिनी रोड के पास एक टैंकर और

0: कार की टक्कर में हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक से पूछताछ जारी है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका अभी भारत से 178 रन पीछे है। हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम आज अपने दूसरे पूल डी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज नई दिल्ली में शुरू हो गई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकर्णन की भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्ते, आकाशवाणी खरसाङको सन्ध्याकालीन अधिवेशनमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। म पासाङ लकीको तर्फबाट हामी बोलिरहेछौँ एफएम 103.5 मेगाहर्ज, दार्जिलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्ज, साथै न्यूजन एयर एप अनि प्रसार भारती ओटिटी प्लेटफर्ममा। समय साँझको 5:05 भइरहेछ। अब आउनुहोस् श्रोता, मनोरञ्जन गरौँ फौजी श्रोताहरूको निम्ति फिल्मी गीतको कार्यक्रम जय जवानबाट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है।

0: अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का

0: प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कोलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए।

0: थे, श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
1: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms, directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
3: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention of over 200 people across 14 states, including 62 from Uttar Pradesh, 52 from Haryana, 51 from Delhi and 44 from Punjab. Substantial recoveries including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from ISI-funded group. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol.

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2331-7106 and 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे

0: ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इशूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता ऐसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
3: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए। कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज?
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग, यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
3: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे FBO क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्वलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है FBO को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हमारा एक पोर्टल है फोस्कॉस करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कई भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं। हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं FBO को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार
0: जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
4: हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेबल है, जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है?
0: जी कविता मैम, बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका?
3: दवा

0: बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम के डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा. वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टर रेकमेंडेड है. उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स, मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
1: जी बिल्कुल. और अनुपम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है? पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं?
2: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले 5 वर्षों में इन्होंने, इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
1: बहुत बड़ी कार्रवाई.
2: और ये जो नोटिसेज हैं, विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है, उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं, जहां कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे.
2: इनफैक्ट यदि आप सारे जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे, यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी. तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया, जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं. दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में, वो है डार्क पैटर्न को लेकर. डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है, तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है. तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें जेप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइस जेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है. एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है, वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे, जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे, इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है. तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्ष की है.
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल. अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
3: जी नमस्कार. मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है. इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है.
1: जी कविता मैम, आपसे सवाल है ये.
0: जी बताइए प्लीज इसको.
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं.
0: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है?
1: जी,
0: करके
1: जी FSSAI का.
0: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है. वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, FBO, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है. हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं, उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं. अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं. अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हसार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे. इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है. सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है.

0: बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का। उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है। मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
2: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
2: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
2: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4,000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: हेलो, नमस्कार
1: जी। श्रीकांत जी,
3: बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
3: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
1: जी,
3: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके समाधान का क्या, मतलब तरीका क्या है? मतलब
1: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
0: हाँ जी, क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है और ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही उनका सवाल है ना?
1: जी,
0: हाँ जी। मतलब एनी प्रोडक्ट, शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो शेल्फ में, मतलब वो रिटेलर भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन will be

0: इन प्लेस. ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम लेबल नहीं देखते जनरली. अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है, मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके. इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है. मतलब क्योंकि एक पैकेट प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है. इसका पनिशमेंट भी है.
1: जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
2: जितने भी उपभोक्ता है उनका यह अधिकार है कि उनकी जी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
1: जी.
2: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915 1915 है, यह टोल फ्री है
1: जी.
2: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं. यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी.
2: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है. व्हाट्सएप नंबर है 8800195880019. ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है. हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें. यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं. और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है. और पिछले एक वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है
1: जी. और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से. उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी आपसे सवाल ये रहेगा.
0: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा. इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं. फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है. अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में एड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं. मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम. और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं. इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का. एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ. पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है. सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके. फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है. इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है. अगर लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग. फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को.
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हैलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी.
2: इसमें बेसिकली तीन निशान है. एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता

0: प्रमाणित है। दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है। तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये BIS केयर ऐप जो एक BIS के ऐप में है उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे वो BIS का हैलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
2: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS में हम क्या बोलते कंप्लेंट करते या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम जी
0: आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहां कीजिए, वहां आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है आप वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सिर्फ एक फोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
3: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है, उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते और पोस्ट कॉस पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे।
1: अनुपम जी पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी बैच नंबर निर्माता का पता अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
0: पैकेज पर कई एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
0: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
3: एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे

0: कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर. सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है. लेबल में क्या दिया है, हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं. आजकल हम बताते हैं, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए. सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से. अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच.
1: जी कविता जी, समय समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए. तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
2: धन्यवाद.
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोई उसे बताए जाकर, दिल धड़कता है उसके लिए अब तक, वो समझाता किस्सा हुआ तमाम, हम जीते हैं उसके सहारे अब तक, वो जो कहता था भूल जाओगे मुझे, दिल न माना उसके इशारे अब तक, रातों की तन्हाई गवाह है, आंखें ढूंढती हैं उसे तारों में अब तक, वक्त ने लाख समझाया दिल को मगर जख्म देते हैं उसके नजारे अब तक, कोई उसे बताए जाकर इतना के हमने रखा है दिल संभाले अब तक।

उजाड़ लम्हों की दास्तानें जो तुम कहो तो सुनाए तुमको, बहुत हम जागते हैं, आओ जरा सा जगाएं तुमको। ये तन्हा रात, ये दिल उदास और आंखें नम, अगर इजाजत हो तो ये हाले दिल भी सुनाए तुमको। तुम्हें जो बताएं दास्तान गम अपनी, तो क्या सुन सकोगे? दिल पे जो बीती कयामत, वो सब लफ्जों में बुन सकोगे? दिल खामोशी में ढाल के बैठा है दर्द सारा, मेरे दिल की सदा को सुन सकोगे? सुनो, इस इश्क ने कहीं का ना छोड़ा हमको, वीरान हुआ दिल का नगर सारा मेरे हमदम। हम जिसको समझ बैठे थे मोहब्बत, वो बन गया आखिर दिल का खसारा मेरे हमदम।

तेरा ना होना हकीकते हाल है अब, दर्द की कुछ दवा नहीं बहरहाल अब। किसी की याद ने रखा है आबाद मुझको, किसी की याद ही है दिल पर वबाल अब। मैं अपने जख्म छुपाऊं किस करीने से, हर एक आंख में तेरा ही सवाल है अब। हवा के साथ उड़े ख्वाहिशों के पुर्जे, शहरे वफा में कितना मलाल है अब। सुना है उसको मेरे जिक्र से गुरेज नहीं, मगर ये बात भी महज ख्याल है अब।

इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो शबो रोज के सिलसिले अब नहीं रहे, हम जिंदा तो हैं मगर जिंदा नहीं रहे। जो ख्वाब मेरी आंखों में भरे थे तूने, वक्त की धूप में वो हरे नहीं रहे। वफा की राह में क्या कुछ नहीं लुटाया, फिर भी तेरे नसीब में हम नहीं रहे। हम अपने आप से भी बिछड़ते चले गए, आई नाए दिल में वो पहले से नहीं रहे। अब कौन इंतजार की शम्मे जलाएगा, वो लौट के आने के वादे अब नहीं रहे।

आओगे लौट कर कभी, ये दिल को यकीन सा है, हर एक ख्वाब में तेरा निशान सा है। हवा के दोष पे आती है खुशबू, लगे यूं जैसे करीब तेरा मका है। मैं जागती हूँ रात भर तेरी याद की हरारत में, मेरे वजूद में एक दर्द जाविदा सा है। अगरचे दूर हो तुम, फिर भी दिल गवाही दे रहा है कि इस हिजर के पीछे विसाल का जहां सा है। ना पूछ हाले दिल बेकरार ऐ हमदम, तेरी जुदाई में हर लम्हा इम्तिहान सा है।

तुझको भी बिछड़ने का बहाना चाहिए, मुझको भी अब शायद चले जाना चाहिए। जो तेरा है रख ले तू, जो है मेरा मुझको दे दे। एक दूसरे का वक्त हमें लौटाना चाहिए, और ना झेलेगा अब आंधियां तूफान, रेत का ये मकान ढह जाना चाहिए। हो गया है दो दिलों में फासला, अब हमको जुदा हो जाना चाहिए। ये तय है कि अब ना मिलेंगे हम कभी, एक आखिरी बार अब गले लग जाना चाहिए।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।